पार्थिवास एफएम समय सूचक। यो पार्थिवास एफएम को समय हो। अहिले साँझ 6 बज्यो।

दशैंमा सीजी ब्रान्ड तथा सीजी मेरिडिया का होम अप्लायंसेस र होम एन्टरटेनमेन्ट का सामान किन्दा 1,02,000 रुपैयाँ सम्मको बचत। वाशिंग मशीनमा 6 केजी, टप लोड वाशिंग मशीनमा 4 केजी, सेमी अटोमेटिक वाशिंग मशीनमा 2 केजी सर्फ एक्सेल, माइक्रोवेभमा कुकिङ किट र एसीमा निशुल्क जडा, साथै 0% ब्याजमा सजिलो किस्ता। सीजी भरोसा नेपालीको उत्सव दशैं तिहारको एक्सपिरियन्स लाइफ विथ सीजी।

पार्थिवास एफएम समय सूचक यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले साँझ 7 बज्यो।

के तपाईँलाई तयारी सुन र असली चाँदीका गहना आवश्यक छ या पुरानो सुन रिफान गरी एक नम्बर बनाउनु परेको छ? यदि त्यसो हो भने सधैँ हामीलाई सम्झनुहोस्। मनोकामना सुन चाँदी पसल। चैनपुर छ चैनपुर बजार त्रिचोक प्रोभाइडर पदम रसाइली ममता रसाइली। सम्पर्क 9861 37744 र 9153877।